0: ଦୟା ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ। ଦୟା ହେଉଛି ଧର୍ମର ମୂଳ ଓ ମାନବର କୋମଳତମ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ସକାଳ 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ମନୋଜ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देशभर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोप वे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच धर्मशाला में शाम

0: 7 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कटक आरंभ करुछु भक्ति गीतर कार्यक्रम वंदना। आज वंदनार प्रथम भक्ति गीत गाई भिकारी चरण बड़ शिल्पी कंठरी वैकुंठनाथ ब्रह्मचारी रचना हृदय सिंहासने बसई मोदी अरबी ना तो आरती करुण कंठरी तब श्री पयरी करित जाणिना विनती।

0: अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू ह्यः राष्ट्रपति भवने आयोजिते नागरिक अलंकरण समारोहे षट्षष्टिः प्रमुखाग्रगण्य विभूतिभ्यः पद्म पुरस्कारान् प्रादात्। एतेषु द्वाभ्यां विभूतिभ्यां पद्म विभूषणम्, षड्भ्यः पद्म भूषणम्, सहैव अष्टपञ्चाशद् विभूतिभ्यः पद्मश्रीः प्रदत्ताः। कलाक्षेत्रे विशिष्ट योगदानार्थं सुप्रसिद्धः चलच्चित्र अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल महोदयः मृत्योपरान्तं पद्म विभूषण सम्मानेन अलंकृतः। अभिनेतुः भार्या हेमा मालिनी एतं पुरस्कारं स्वीकृतवती। प्रख्यातः भारतीय सारंगी वादकः डॉ एन राजम अपि पद्म विभूषण सम्मानेन सुपूजितः। अस्मिन् अलंकरण समारोहे उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय मंत्री अमित शाहः, गजेन्द्र सिंह शेखावतः, एचडी कुमारस्वामी च उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरभ्य सिक्किम राज्यस्य त्रिदिवसात्मिकां यात्रां विधास्यति। सिक्किम प्रवासकाले सा विविधेषु कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति, अनेकानि स्थानानि च द्रक्ष्यति। राष्ट्रपति महोदया सायंकाले गंगटोक नगरे स्थिते नाइम्नॉल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी इति संस्थां प्रति गमिष्यति। सिक्किम सर्वकारेण तस्याः स्वागताय विपुलाः प्रबन्धाः विहिताः। विश्व स्वास्थ्य संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो अथ युगांडा देशेषु इबोला संक्रमणं अन्ताराष्ट्रिय चिन्तायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालत्वेन घोषितम्। एतदनन्तरं नागर विमानन महादेशालयेन विमान विपणीनां कृते एका मानक संचालन प्रक्रिया प्रसारिता। अत्रावधेयास्पदं वर्तते यत् विमानेषु अनिवार्य रूपेण पदक्षेपाः विहितव्याः भविष्यन्ति। यथा इबोला संकटं दृष्ट्वा यदि कस्यापि यात्रिणः ज्वरः, दौर्बल्यं, पीड़ा, शिरोवेदना, कंठदाहः, वमनमित्यादीनि लक्षणानि दृश्यन्ते तर्हि सः सद्यः एव विमान कर्मचारिभ्यः आगमानन्तरं चिकित्सा विभागेभ्यः सूचयेत्। महानिदेशालयेन स्पष्टीकृतं यत् भारते आगमनात् एकविंशति दिनानां मध्ये यदि एतादृशानि लक्षणानि उत्पद्यन्ते तर्हि यात्रिणः निर्दिष्ट चिकित्सालयेभ्यः चिकित्सा साहाय्यं प्राप्नुयुः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य यावत् मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, विदर्भ क्षेत्रेषु उष्ण स्थितिमुद्दिश्य रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीय संचेतना प्रसारिता। विभागेन आगामी द्वित्रि दिनेषु हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्येषु तीव्र उष्ण तरंगस्य पूर्व सूचना प्रख्यापिता। एतादृशी एव स्थिति अद्य यावत् छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड राज्येषु अपि भवितुं संभाव्यते। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधवः अवदत् यत् सर्वकारः योग प्राकृतिक चिकित्सा माध्यमेन कृत्स्नेही देशे निवारक स्वास्थ्य सेवाः सुदृढीकरोति। नवदिल्ल्याम् आयुष मंत्रालयस्य संसदीय परामर्शदात्री समित्याः चतुर्थ उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्री जाधवः अवचत् यत् योगः, प्राकृतिक चिकित्सा च समग्र निवारक स्वास्थ्य सेवायै भारतस्य शाश्वतं योगदानं वर्तते। अस्मिन् उपवेशने भारते योग प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रस्य विस्तारे, स्वास्थ्य संवर्धन सम्बद्धेषु प्रयासेषु तथा च पारम्परिक चिकित्सा पद्धतीनां वैश्विक प्रसारे च विस्तरेण चर्चा अभवत्। सः अग्रे सूचितवान् यत् सम्प्रति विश्वस्य 90+ देशेषु अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः समारोहः आचर्यते। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी कटक सुनंदी प्रचारित होबाकु थिबा कार्यक्रमर सूचना आमर स्वास्थ्य प्रचार करिबो सकाळ 7:10 एथरे विषय रहिछि आम खाद्य केति पुष्टिकर। ए संपर्क आलोचना करिबे डाक्टर गीतांजलि

0: କଥିକିରି ଶୁଣିଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, କହିଲି ହଳଧର ଧୀର, ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: अच्छा दास बाबू आपण घर
2: सतुरी विश्वास रखी
3: शक्ति जहाँ वर्ष वर्ष नुह बर पीढ़ी पाई रही था चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आरंभ करछु पल्ली संगीतर विशेष कार्यक्रम मधुमालती।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसे जरूरी

0: सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। की गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
4: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
1: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए, प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की

0: चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल के क्वालिफायर वन मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में तनिषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं। ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ते ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak.

0: कहि कहि थक्की गलेनी
1: कोन हला
0: नुवा किटबैग दरकार
1: त प्रथमे कैप्टन को कह न सुनिबे त मैनेजर को
0: करेक्ट
1: त एमिति ही प्रथमे अभिजोग बैंक रे करंतु 30 दिन भीतर उत्तर किबा समाधान प्राप्त नहले सीएमएस पोर्टल रे अभिजोग करंतु त प्रथमे बैंक तापर सीएमएस पोर्टल नहले अभिजोग हेबो नामंजूर जिबा निया सिगलाना किटबैग
2: आरबीआई कहे
3: प्रथमे निज बैंक तापर आरबीआई ओम्बुड्समन

0: So your name is R.B. Samanta?
1: Yes, Raghuvir Samanta. And yours?
0: Joe.
1: Joe? Eta bodhoy tomar chatmo namo.
0: Manisha ko chinima pe namati darkar to. Now go on pe.
1: Tome kete porjonto paatho padhicho?
0: You are asking a lot of questions.
1: Karan tamaku janiba mor agraha achi. Ethe tomar kichi apatti achi?
0: Mo jane science graduate. Aau kichi pacharibar achi?
1: Pacharibar to anek achi. Hele, tome kon se sabur uttar dabo?
0: Kahiki pacharibo? मो कार्यकलाप कौन पर परिचय दौनी
1: देख तुम जदि साधारण जने डकायत हे था तबे कोनोसी प्रश्न तुमको पचारियो दरकार फोन तो नहीं किंतु तुम ता नुह जदिओ जे कोनोसी खुनियो डकायत थरु तुम क्राइम केछि कम नहि तुमर कोडा गोटा महत उद्देश्य रहिछि आज जते बेले मो सौभाग्य को तुम मोर अतिथि हिछ तुम से महान आइडियोलॉजी विषय मते किछि धारणा दे परिबो माने अन्य प्रकार कहिले मते तुम बुझै दे परिबो जे तुम जहा जहा सब करूछ ताको ठीक
0: मत परियास करूछ
1: मो कथा गडा तुमको परियास लागुछि सारा देशटा आज तमनकर आतंक अत्याचार थरहर अथच तमे काहे के सब करछ बोली पचारिबाटा तुमको परियास बोली मन होछि
0: ये डिबेट करिवार जागा नुहे किमा मु खूब गडा वक्ता नुहे
1: तुमको वक्तुता करबो के कहुनी
0: मो जाने चरमपंथी निर्दय मु मणिस मारि परे बस
1: लढै रे सैन्य माने भी मणिस मारंती एवं एई अपकर्म पई ताको विभिन्न पदवी ओ उपाधि रे भूषित करा जाय अथच देश भितरे एई काम पई नरहत्या अपराध रे जणे लोक दंडित हुई तेनु कामटा बड़ कथा नुहे बड़ कथा होची मोटी बिहाइंड एक्शन घरे सोइथिबा बा रास्ता रे जाउथबा निरीह निरस्त्र लोक उठी को तमे काहे कि बाजिबो देयर मस्ट बी ए वैलिड रीजन व्हाई
0: तमे आपण कोन करंती
1: कौन करे माने
0: व्हाट इज योर प्रोफेसर
1: आई एम ए रिटायर्ड सिविल सर्वेंट
0: अम्मा पे गोटे काम कर देबे
1: कौन काम
0: गोटे टेलीफोन देखो तो आपण हमको सहाय्य करे आमे टू शीघ्र चल जाई परिबो एतरे आपण कर भी मंगल
1: तमे निजो मंगल विषय रे चिंता करो मो पे व्यस्त हवा दरकार नै आ तमे जदि भाऊ थाओ तमे पॉकेट रे पिस्तल अछि बोली मु डर रे तमको सहाय्य करबी तबे सेइटा तमार भूल धारणा
0: अरे तु एठी की चली आसिलु
2: व्यस्त हो दरकार नहीं पछपट दर्जे मु चाबी लगे दीची
0: आउ टिके आगर उपर आस्थार अवस्था लक्ष्य करथले एबे आउ खाली पुलिस नुहते पारा मिलिटरी फोर्स भी रास्ते छाई ही गले
2: पछपट अवस्था भी तद्रूप बी

0: सेफ जवान आउ कमांड बाहिनी भर्ती आमे जंतरे पड़ जाइछे जो एठु बाहरि जिवार उपाय नाही
1: केते दूर से माने अछन्ते
0: ए घरर पछपटे अनाबना जंगल टी अछि प्राय अधो किलोमीटर हबो तारि भीतर से माने पुइत्र मारछन्ति
1: केते बाट पर्यंत तू जाइथिलु
0: जंगल मझि पर्यंत जंगल से पाखरे नई
1: शेष पर्यंत सेइते हे हमर जीवा बाट हेइ पारे
0: पागल हेलु ता भीतर केते संख्यार कमांड अछन्ति की जाने
1: केते संख्यार थाई परे तुली भाबुछु
0: काहेकि तू कोन सेमान को मुकाला करिया कथा भाबुछु
1: जदि आउ किछु उपाय न मिले तबे ताए होय त करियो पड़ि परे
0: तो मुंडा फुंडा खराब हेइछ ना कोन सेठी सिक्युरिटी फोर्सर छाउनी पड़िछ जानु
1: आउ गड या भीतर दिन पर दिन लुचि थबु बारी वक्त पड़ि दरिछ
0: हेले किमिति बाहरिबा से मानु का हाथ रे ऑटोमेटिक राइफल आउ आम हाथ रे दीटा पिस्तल
1: पंच ट आरडीएक्स बमर शक्ति किछु कम न होय किम ज्योतिपुर आर्मी जिनस केबे देखि नथिबे
0: अच्छा जेल साहेब को खबर दी हुंता नी से जेमिति हम को मुकले नी आते
1: किंतु केमिति खबर दिया जीवो
0: टेलीफोन रे अच्छा तांको टेलीफोन नंबर तू जानु
1: टेलीफोन रे व्यवहार करबा आबा पे विपदजनक कहि पारे
0: अरे आमे काहे के टेलीफोन करबा आउ कोन कहि नाती
1: आउ के मिस्टर सामंत
0: मिस्टर सामंत से के
1: आमे जहा कर आश्रय नेचो ताना मिस्टर आर वी सामंत रिटायर्ड सिविल सर्वेंट
0: तो ताको टेलीफोन करबा कहितुलु
1: कहितिले हेले से आबो कथा रखे वाली मन होनी
0: नाको ऊपर गोटे घुसी बसाई देले तो बाबा जे से रखबो
1: ना तू सेम किछ करिवु नी
0: काहे की
1: तो मिस्टर बाबी से सामंत दर हाथ दबु नी
0: हाथ तो देबी नी से मारे को तो सासु ससुर होती अरे काहे से मान को तो झियो पियो कहि दिसु नांती
1: तू जानु किम एमबी सर लीडर हो छी मु अब एटा तो प्रति मोर ऑर्डर अब बेसी बक बक नै बैग रे कोन छी बाहर कर मते भीषण भूख लागिरानी
0: बैग भीतर बोमा अछि ने खा
1: अरे रागु छु काई की ए इति की
0: सते की
1: से पछि पटे एक आगे सार दे थबु आ आसीबो कोठो
0: मो आदु खाइनी काली राति रु से पावरटी खंड क एमति पड़छि
1: एटा तो जणो को भी होबनी
0: अरे तू खा मते भूख नै
1: अरे यार मरिबो तो गुली रे मरिबो न खाई मरिबो काई की ने एटा को 50-50 कर दबा धर
0: ओहो कहली ना मते भूख नै
1: भोक अछि मु जाने अरे जाबो देखा जीवो तू एंदी व्यस्त होछु काहे की
0: केमिति व्यस्त होबि नी एठी हमर रहिबा 4 घंटा हेगरानी अथच तू किछि चिंता करुनु कम ना लीडर
1: मु किछि चिंता करनी बल तू केम जानलु एई देख मोर नोटबुक देख जिल साहेब संगरे कोड कांटेक्ट करिया पे मु चिट्ठी ड्राफ्ट कर सारी छी
0: किंतु टेलीफोन करबो के तू तो कहछु सामंत आम कथा रखिबो नी आउ ता देहरे हाथ देबा पई तू भी मना करछु तबे
1: देखि दुनिया रे सब मनुष्य समान नहुंती तू जे मेथड रे कथा वार्ता करिया पे चाहू छु ता एठी काम दबनी
0: तबे तू आउ कि छोटे मेथड कथा चिंता करछु ना कोन
1: सामंत पाखरे किछ मेथड काम देला भली मने होनी से गोटे अलगा प्रकार मनुष्य तू देखु छु से बाता स्त्री हमकु टिके भी डरु नहंती
0: सैया तो मु देखु छी
1: किंतु मोर विश्वास से हमकु सहाय्य करिवो सबुठे बेसी सहाय्य करिवो
0: केमिति जानलु
1: मनीष चरित्र को पढ़िया अभ्यास कर तू भी जानी परिबु के
2: अरे एठी चुपचाप बसी कोन करछ
3: भोको हेला ना नहीं
0: से कोन
3: खाद्य तुम दुई जण को पई तुम्हें खाओ मु तुम पई पानी आनु
1: दे आरंभ कर
0: आमे सो खाइबा उचित बोली तू भाबुछु
1: उचित रे गई कि कोन बिस बिस बिसाई तू बोली भाबुछु अरे नहीं यार ए देख मु खाउची
0: जो
1: अरे
0: जो,
1: अरे जो हतरेम धर चुका है जे
0: नहीं जो ना ए खाद्य तो खाई परबुनी
1: की निर्बोधता गोटे सीमा थाए किम मु देखु छी तू से सीमा टपी करली महत छाड़
0: नहीं
1: देख मत भीषण भूख को ए खाद्य बासना ना मु भूख चारि गुण बढ़ी गलानी
0: निर्बोध मु नहे निर्बोध मु नहे जो निर्बोध तू तू भूली जाउ छी जे कहारी घरु किछि खाइबा पई हमकु पूरा निषेध अछि
1: ए निर्देशनामा जो माने जारी करछ से माने मनुष्य चरित्र संपर्क रे खूब कम जानि छथि से माने धरि नै छथि सब मनुष्य हमर शत्रु आ हम खातिर से माने विषम विषय दे पारथि किंतु मु कहू छी तो निर्भर ए खाद्य खाइ परु
0: ना मु ए खाद्य खाइबिनि
1: ठीक अछि न खा मु खाउ छी
3: किरे तोर कोन हला तू काहे कि खाउनु
0: मु कहारी घरे खाएनि
3: ये कहारी घर नहीं भगवान कर मंदिर आ ये तांको प्रसाद
0: मु तुम भगवान को मानेनि कि तुम प्रसाद मध्य खाएनी
3: कौन हैला मो भगवान आउ तो भगवान अलगा
0: हाँ अलगा ମୋ ଧର୍ମ।

0: अलगा मो विश्वास अलगा
1: तेबे मो भगवान को मंदिर भीतर पसिलो काहे की इठी 5 घंटा हला रहिजु सुन धर्म कहले तू कोन बुझु मु जानेनी हेले मो धर्म होउची मो घरे केही जणे भी भुखिला थिबा पर्यंत मु खाइनी हे देख मते जा सखाल पहर मु किछि खाइनी आउ तू न खाइबा पर्यंत मु भी खाइ पारुनी मते कोन उपास रखियो कि रे बाबा ने आगर मु खोइ दउची केते बळु कोठी कोन खाइथिबु नथिबु ने हां सुना बोटा मोर एथरो तमे दिमे खाउ था मु पानी आनु छी
0: ए तोरा बाटू आसिलु तो खा पेट पुरे खा
2: कॉलिंग बेल
3: की आसिला बथुवे
4: तमे दि जण भीतर खुशा मु देखु छी
1: सुलेखा इथि पर बथुवे बंटी को नबा को आसी
3: बंटी एठी अछि बिले आपण कहिबेनी
4: तमे भीतर को जाओ कौन कहिबो कहबो मु जाने ये सुलेखा नहि दूध वाला कि पेपर वाला हिथे परंती
1: शीघ्र आस मु खाइबा ट्रे आ पानी जग नै जाउ छी भीतर बसी आराम रे खाइबा
5: सुनो जे भी आस थौ आमे भीतर अछु बोली सामान्य सूचना भी जेमकि न दियो तमो स्त्री आउ से पिला आमो हिफाजत रे अछंती हां ए कथा मन थाई जेमती
6: अरे इंस्पेक्टर साहब कौन खबर
7: आपण को ना आरबी सामन आपण को परिवार लोक संख्या केते
5: दु जण मु आ मो स्त्री
7: आउ के
5: ना आउ के हांती
7: आपण को स्त्री कांती तांको टिके ठी राखंतु
5: सीता सीता टिके ठी कासिबो
1: कोन हला
7: मिसेस सामन आपण पढी जानती
1: जाने
7: एई कागज रे जा छी मने मने पढंतु
1: आमोखरे के नहांती कहा कथा आपण कहचंती
7: देखंतु आपण किछ लुचो नान त
1: कोन लुचीबी
7: आमा अनाउंसमेंट कोन आपण सुनी नांती दुई जन संत्रासवादी शहर भीतर उपस्थित छंती आं भाबुचो से माने बहुत एकाहि करे आतंक ओपन कर रहै छंती
5: तबे देखंतु आउ का घर छै परंती आमो घर को तो केही आसी नांती
7: ऑलराइट मते बेसु छी किन देखंतु जदी से माने आसंतिबा अन्य कोनसी साई पडसा घर से माने लुचीतिबार संधान पांती तबे आपण को तो टेलीफोन अछि रिसीवर खाली उठाई रखि देबे किछि कहिबा दरकार नै रिसीवर उठाइले ही आमी जानि परबो टेलीफोन एक्सचेंज रे हमर दुई जन ऑफिसर जगरी होइ छथि
5: जदि कोनसी बंधु को बा आउका को फोन करबा दरकार होए
7: ता आपण करि परिबे किछि असुविधा नै फोन उठाई किछि न कहिले ही आमी बुझिबो समथिंग रॉन्ग ओके अच्छा म आसु छी आपण कबाट बंद करू
0: से कागज रे कोन लेखा देला मिसेस सामंत माने पुलिस ऑफिसर जोटा आपण को पढैला
5: अरे हां से कागज रे कोन लेखा देला
1: लेखा थिला जदी आपण को घरे केही बाहर लोक आश्रय नै थांती ओ आपण आम को कहबा को भय करू थांती तेबे बा हातटी मुंड रे छुई संकेत दियंतु ताहले आमे जानि परिबू सेई अनुसार व्यवस्था करिबू आपण मुह को लिखिछि कहबा दरकार नै
5: आ तमाने निश्चय कबाट फांकर लक्ष्य कर देखि छ जे मो स्त्री से पर कोनसी संकेत दे नहंती बरंग मुह खोली परिस्कार कहि छथि जे आमो घरे केही नहंती
8: आउ जदि सेमिति संकेत से दे थांते तेबे आमे तो धरा पड़ी थंतु हेले तुमकु ओ तुमरे सुंदर घर को आमे बोमा मारे उड़े दे थंतु
5: तमे जदि एबे भी भाबु थाओ जे भय देखे तमे आमतु सुविधा हासिल करू छ तबे तमतु निर्बोध दुनिया रे केही नहंती से कागज कौन लेखा चले तुम्हें कौन जानी थिलो जे मिसेस सामंत कौन संकेत दले तुम्हें बुझ पकी था तो आ तुम्हें जानो पुलिस हम कौन कही गले टेलीफोन रिसीवर ती खाली उठेले ही तुम्हें एठी अछो बोली से माने जानिबे किछि कहिबा दरकार नै आउरी भी जानी रखो ए घर बा हम जीवन प्रति हमर खूब गोटा अटैचमेंट नै कोनसी परिणाम प्रति हमर भय नै बुझिलो तमे जदि भूत नहि मनुष्य हेतिबो तबे आउ थरे भी हमको बोमा पिस्तल भय देखेबो नै आसो सीता सकाळ तु तमे किछि खाइनो आसो मसे गले
3: एबे कहो किम एमिते लोकंक पई तो संविधान ने की प्रकार मेथडर व्यवस्था अछि जो मान कर दिजो जीवन को खातिर नै किछ करि परिबो से मान कर
8: एमिते बज्जात लोक मु दुनिया रे देखिनी जीवन को भय नै अथच आम को सहाय्य करछंती ସେଇ ମାଇକ୍ ନେତା ଆମକୁ ଖୁବ୍ ସହ

0: कौन कहु
1: राति बारटा बाजिब अथच जेल साहब एजे आसलानी
0: मो भी सही कथा भावुची
1: ये निश्चय जेल
0: पुलिस भी है पारे
1: मिस्टर सामंत बोधे सोई पड़े कबाट किए खोल
0: आम खोल आम संदीप आ प्रकाश
1: तू खोल मु आड़ अपेक्षा कर
0: ठीक अच्छे अरे जिल साहेब
1: आपण एते डेरी आसुन जिल साहेब एणे आम अवस्था जहां हेलानी
2: कौन करी हाँ? रास्ता घाट रे पुलिस पैंतरा मारुचंती तुम फोन पाइबा परठु मु बहुत चेष्टा कलिणे हाँ? किंतु एठिके आसीबा संभव हेई पारनी तुम्हें गोटे ओडुआ जगार फसी जाइछ हाँ मेन रोड बदल रे तुम्हें सिना गोली रे पसी थांतो एठु तुमको खसेबा केड़े मुश्किल काम जानुछ हाँ
0: ए घर दर्जा खोला थिला आम एठी पहुंचा पूर्व पुलिस के इनफर्मेशन पाई आमे नाचार ही पशिगलु
1: एठ के मुकुलवा कहतु आज रात भितर एठ नगले आवा संभव नुहे
2: अध घंटा भितर तुम्हें एठ मुकुली जीव हागुरु मो महुबाक्स
0: बैग भितर पैकेट आनी दे
1: संगे संगे दौ
2: अच्छा जो बेटा ये लोकटा केमती हाँ कौन ता ना सामंतो हाँ
0: जिल साहब आम जो ए पर्यंत बंचीचु खास तारी पे से आम पे पुलिस को भी मिछ कही
2: हाँ ता माने से तुमको साहय करुची किंतु कहीं लोकटार अन्य किसी मतलब नहीं तो हाँ
0: ना जिल साहब ना से गोटा अलग प्रकार लोक
2: एते शीघ्र लोक को विश्वास करी ठीक नुहे
0: आठ मास तले रणपुर चेक गेट पाखे गोटाए टूरिस्ट बस जो चढ़ऊ मन अच्छी
2: चेक गेट ऑपरेशन से ऑपरेशन मो ऑर्डर रे हा मो लोक माने करी थिले
0: आपण को लोक माने
2: हाँ तुम्हें एमती चमकुच कहीं कौन है जी
0: से ऑपरेशन रे तापु मरी जाई छी
2: हाँ अच्छा अच्छा हाँ तथापि तुम्हें भावुच से तुमको साहय करुची हाँ
0: करुची तो सब प्रकार साहय करुची
2: कहीं कहीं कि
1: ए आपण को माल जेल साहेब
2: वाह केते अछि
1: अधा किलो
2: आओ तेबे तो बहुत बहुत टंका हब 50 लाख
0: टंका आमे पर नेले भी चलिबो हेले एठु आमे मुकुलि केमथि कोहंतो
2: हां ओ हां व्यस्त हवा दरकार नै पछपट दरजा खोला रख आउ अध घंटा परे मु आसी तुमको नहीं जुबे हाँ सामना पटे तुम्हें तो कस्मिन काले जाई परिवने हाँ
1: हेले पछो पड़ तो बीएसएफ कमांडो फोर्स
0: सर्च लाइट थरी जगी रही चेती
2: राती गोटाए बेले ड्यूटी चेंज हो वो हाँ से तो बेले जो माने चार्ज ने बे से माने मोल को का बुझिला हाँ मोल को अच्छा मु आसिले पछ द्वार खोला रखे हाँ पछ द्वार खोला रखे
0: अरे आपण ही जाए सोई नाथी मिस्टर सामंत
3: केमिति सोईबी मो घर अतिथि माने आशंका और दुश्चिंतार विव्रत थिला बेले मते कण निद हब
0: ये तो आमर नित्यदिनिया जीवन आशंका संध्या और सतर्कता आम निश्वास मिसी रही बेले बेले लगातार 4-5 राति आम अनिद्रा कटौ तेणु आम पे चिंता नक आपड़ पड़े जातु
3: कहीं कठिन साधना को लक्ष्य।

0: कौन? मु आउ तो मिशन रे जाई परबिनी। मु आज बुझी परची तो लक्ष्य भूल, तो सरिस्तानी भूल, निशा कारबार भूल, एमिति भलो मनुष्य को बिना कारण गुड़ी करिया मध्ये भूल।
1: ठीक अछि, जहां तोर खुशी।
0: कौन करछु? काहा को टेलीफोन करिवु?
1: टेलीफोन रिसीवर ता खाली उठे रखि देले हि सबारे खबर पाई जिवे, किछ कहिबा दरकार नै। बस
0: हेले तू छिड़ा ही रहलु कहेंगे, सेमान आसी जिवे।
1: तू मते कौन भावुछु किम? मो बापा मां को सब एठी एमती पड़िथिबा बेले पड़े जिबी कोड़े
2: जो तू
1: हके हाँ मो निज बापा बाठो कौन सी गुण रे मैंने अलग नुहते मो से मनकर से मरी जाइथिबा पु मो भी पुलिस पाखरे सरेंडर करिवे हेले हेले जेल जिबा आगरो मुसे बनागर अंतिष्ट क्रिया सारी भी

0: ताकु तो मार दलो एबे कौन करिवो
1: तू पछ द्वार दी पळे जा
0: आ तो
1: मु सरेंडर करबे
0: तो भोली जाउ छु किम ए मिशन लीडर हो छु मु तू मते निर्देश दे परिबनी जहां करबा क त मु करबी
1: कौन करिवो गुली करिवो मते

हे गुणे ज्ञान विवेक महोदय रात्रि पाई कवि लक्ष्य पड़ी एक आश्रम से आश्रम वृक्षलता ठार पशुपक्षी पर्यंत समस्त अहिंसा व्रत आचरण कर संपर्क में आपण मान महाकवि भाष स्वप्न वासवदत्ता नाटक पदुटे प्रमाण दिखते विश्रवद हरिणा चरंती चकिता देशांगत प्रत्यया वृक्ष पुष्प फला समृद विटपा सर्वे दया रखिता भूयिष्ट कपिला गोकुलधना नक्षत्र बत्वदिश निशमदिगितमिदं तपोवन चयं धूमैव बह्वाश्रय एही आश्रम मृग माने हरिण माने हिंस्र जंतु भय न कर मन इच्छा विचरण एवं वृक्षलता फल पुष्प विमंडित कपिल रंगर गाभी माने नक्षत्र भलिया शोभा पाउछन्ति एवं मुनि ऋषि मानक मुखर वेद ध्वनि पवित्र आश्रम को पवित्र करुछि एही भली जो आश्रम ये आश्रम मंद एवं उदर नामक दुई जन ऋषि वास करथिले ये ऋषि दुई जन प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त रु सज्जिया त्याग पूर्वक

पंडित मंडली यार लेख कहले मोर पूज्यस्पद गुरुदेव बहिंतर महापात्र बाली कहती गो सुंदरी रे भूलता मोहिनी मोर कौ दोष देख लु मो प्रति एमती आड़ रुषा करो प्रति विमान हे सुंदरी ये मंदर उ।

ए सम्मानीय पंडित मंडळी सेदिन रावण से झीर हाथ को धरी आश्रम रु भिड़ी आने बेले बाली उपस्थित होला कहला मो आगर मो भाभी पत्नी नहीं जीव छाड़ीदेवी संगे संगे बाली कौन कला जाइया सी झीर डाण हाथ को धाबी धाबी धरला कहला सुंदरी आउ के दिन आश्रम कष्ट भोग कर शीघ्र मो साथी आस पंडित मंडली बाली हाथ में एक कोटी सिंह बल सेपटू भिड़ुची रावण एपटू भिड़ुची बाली।

अनुराग कथाचित्रर एही गीतटि शुणिबा इच्छा प्रकाश करि एसएमएस करिछन्ति झांजिरी मंगला कटकरु बामदेव पृष्टि गाइछन्ति अनुराधा पोडवाल एवं भूपिंदर।

0: ମଞ୍ଜୁଳା ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଚିତ୍ରର ଗୀତ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଜରିଆରେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: ନମସ୍କାର, ଆକାଶବାଣୀ ସମାଚାର କେ ସାଥ ମୈଁ ଲଭଲିନ ନିଗମ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी

टकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी कुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया, कुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: signed key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Sancho Border Post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL Qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
2: As democratic nations,
3: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
2: Will become even more important to the world.
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा।

0: श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 27वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन

0: बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है, उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है, मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों

0: प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे कि समय परी।

0: पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, वो लिखते हैं।
0: अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आज उमंग कार्यक्रम में दो बहुत ही सुंदर, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पेड़ की बात शीर्षक से जगदीश चंद्र बसु पर केंद्रित कार्यक्रम ने संवाद के माध्यम से उनके कार्यों, उपलब्धियों, प्रयासों और विज्ञान जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत सरलता से चर्चित किया।
1: जी।
0: योगेश ठाकुर जी आगे लिखते हैं।
1: ये कार्यक्रम बच्चों को बसु जी के कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त झलक प्रदान करता है। भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल पर आधारित कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक था। इस कार्यक्रम के माध्यम से सरला ठकराल के द्वारा प्राप्त की गई अभूतपूर्व सफलता की गाथा का पता चलता है। इतने सुंदर कार्यक्रम को श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
0: योगेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर प्रतिक्रिया देने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
1: चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
0: और ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
1: धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं आपका हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमारे कार्यक्रमों की इस श्रृंखला को सराहा है,
0: क्योंकि इस श्रृंखला में आपके लिए हम लेकर आते हैं ढेर सारी मनोरंजक और रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी इस सप्ताह हम क्या जानकारी साझा करने जा रहे हैं, जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: अजीत जी इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे दुनिया के कुछ प्रसिद्ध फूलों पर।
0: जी मुझे याद आया, इसी श्रृंखला में हम भारत के कुछ प्रसिद्ध फूलों की चर्चा भी तो कर चुके हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो आज किस फूल की चर्चा की जाए?
1: अजीत जी आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध फूल चेरी ब्लॉसम की।
0: तो क्यों ना शुरुआत की जाए आपसे।
1: जी श्रोताओ, चेरी ब्लॉसम दुनिया के सबसे प्रसिद्ध फूलों में से एक है। इसका मूल है जापान, यानी इसकी उत्पत्ति जापान से मानी जाती है। जापानी भाषा में इसे सुकुरा कहा जाता है। यह फूल जापान की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पहचान माना जाता है।
0: जी विमलेश जी, ठीक वैसे ही ना जैसे भारत की राष्ट्रीय पहचान फूलों के संदर्भ में कमल है।
1: बिल्कुल सही। जब ये फूल खिलते हैं तो लगभग पूरा देश गुलाबी और सफेद रंगों की मनमोहक छटा से भर जाता है। पूरा वातावरण बेहद खूबसूरत हो जाता है। इसके खिलने के समय में बहुत से पर्यटक खास तौर से जापान आते हैं।
0: विमलेश जी आपने इन फूलों के खिलने के बारे में कहा।
1: जी।
0: तो ये हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे कि चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने का समय कब होता है।
1: अजीत जी, चेरी ब्लॉसम के फूल सामान्यतः मार्च और अप्रैल माह के बीच वसंत ऋतु में खिलते हैं। हालांकि स्थान और तापमान के अनुसार इसके खिलने के समय में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है।
0: विमलेश जी एक और बेहद रोचक बात मैंने फूलों के विषय में पढ़ी थी, और वो ये कि चेरी ब्लॉसम के पेड़ों पर इस मौसम में पहले फूल खिलते हैं, बाद में पत्तियां निकलती हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और इसके कारण पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढका हुआ दिखाई देता है। श्रोताओं आपको बता दें कि जापान में चेरी ब्लॉसम फूलों के खिलने के समय त्योहार जैसा माहौल होता है। इस समय जापान में एक विशेष उत्सव मनाया जाता है जिसे हनामी कहते हैं। अजीत जी अब आपकी बारी।
0: जी श्रोताओं, हनामी को चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी कहा जाता है।
1: जी
0: आइए जानते हैं कि इस उत्सव के दौरान वहाँ लोग क्या करते हैं।
1: इस समय शहरों, गाँवों और कस्बों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें चित्रकारी, गीत संगीत और जापानी संस्कृति की झांकियां दिखाई देती हैं। लेकिन हनामी परंपरा की एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि
0: इस समय लोग चेरी ब्लॉसम पेड़ों के नीचे बैठकर परिवार, मित्रों और खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताते हैं।
1: जी
0: वे एक साथ बैठकर चेरी ब्लॉसम फूलों की अनोखी छटा का आनंद लेते हैं और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं।
1: जी दूर दूर शहरों में रहने वाले परिवार के लोग इस समय एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं।
0: जी
1: और स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिनमें विशेष है सकुरा मोची, ये मीठे चावल का केक होता है।
0: और दूसरा व्यंजन है डांगो, जिन्हें हनामी डांगो भी कहते हैं। ये पिसे हुए चावल के बने हुए गोल आकार के पकवान होते हैं। एक और व्यंजन है खास, उसका नाम है टेम्पुरा।
1: जी
0: इसमें तली हुई सब्जियां और मिठाई और विशेष जापानी चाय परोसी जाती है।
1: ऐसा नहीं है कि चेरी के फूल सिर्फ जापान में ही है, इन फूलों को विभिन्न देशों ने अपनाया जैसे कोरिया, चीन, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। इन देशों ने जापान से इसके पौध को लेकर अपने देशों में विकसित किया है।
0: एक और खास बात आपको बता दें कि चेरी ब्लॉसम के फूल बहुत कम समय के मेहमान होते हैं।
1: जी
0: ये एक से दो सप्ताह तक ही अपनी पूरी सुंदरता में रहते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक और खास बात आपको बता दें श्रोताओं कि चेरी ब्लॉसम वाले पेड़ों में जो चेरी के फल लगते हैं ना, वो बहुत छोटे और खट्टे होते हैं। इन पेड़ों में वो चेरी के फल नहीं लगते जो सामान्य तौर पर खाए जाते हैं।
1: खाने वाले चेरी के फलों के पेड़ अलग होते हैं। दरअसल चेरी ब्लॉसम के पेड़ सजावटी पेड़ माने जाते हैं। इनकी प्रजाति चेरी फल वाले पेड़ की

0: नंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: मनुष्य को हमेशा मौका नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है। आज को ही मौका बना लीजिए।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा।

0: प्रजाति से अलग है।
1: जी,
0: इनका उद्देश्य सिर्फ सफेद और गुलाबी रंगों की अद्भुत छटा को बिखेरना है।
1: और इन फूलों के द्वारा ये संदेश मिलता है कि जीवन भी क्षणिक है, इसीलिए जब तक जीवन है इसे हम सुंदरता से बिताएं और समय का मूल्य समझें।
0: जी,
1: शायद चेरी ब्लॉसम फूलों के हनामी उत्सव का ही प्रभाव है कि जापान में सौंदर्य और कला पर बड़ा जोर दिया जाता है, और हाँ, वहाँ समय की बड़ी प्रतिबद्धता है।
0: जी बिल्कुल। तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
1: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चेरी ब्लॉसम के फूलों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी आप अपने संदेश और हमारे प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ,
0: आप एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम।
1: हमारा पहला कार्यक्रम है वी आर गोइंग टू द जू। सिंगिंग द पोएम श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत इस गीत में मजेदार ढंग से बच्चों की चिड़ियाघर की यात्रा का वर्णन है। पशु पक्षियों की आवाजों को शामिल करके गीत को और भी अधिक रोचक बनाया गया है।
2: चिल्ड्रन, हैव यू एवर विजिटेड अ जू?
3: अ जू?
2: यस, अ जू।
3: Oh yes.
2: All right. So tell me, what do you see in a zoo?
3: Tiger. Lion.
2: Yes.
3: Monkey. Birds of different kind.
2: Very nice.
3: Camel. Giraffe. And so on.
2: Oh wow. So here is a child like you who wants to go to a zoo. Now, let's recite this poem and you all repeat after me. Ready?
3: Ready!
2: The poem goes like this. We are going to the zoo to see a kangaroo.
3: We are going to the zoo to see a kangaroo.
2: And a lion too.
3: And a lion too.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The monkeys swing and climb.
3: The monkeys swing and climb.
2: They know it's feeding time.
3: They know it's feeding time.
2: The polar bear and seals.
3: The polar bear and seals.
2: Enjoy their fishy meals.
3: Enjoy their fishy meals.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: The snakes all slide along.
3: The snakes all slide along.
2: The skunk just makes a pong.
3: The skunk just makes a pong.
2: The tiger gives a roar.
3: The tiger gives a roar.
2: He wants to eat some more.
3: He wants to eat some more.
2: We are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: Yes, we are going to the zoo.
3: We are going to the zoo.
2: So children, you all have listened to this poem just now. Hope you have enjoyed, isn't it?
3: Yes!
2: All right. So now, what will we do?
4: We will hum
5: and we will sing along.
2: Yes, we will hum and sing along.
3: Yay!

0: Dear friends, you have just heard the sounds of different animals in this song. Now, listen to the sounds again and try to identify them by yourself. This was elephant. This was monkey. And this was tiger. This was polar bear. And this was skunk. And this was kangaroo. And friends, do you know that pets and animals are very important part of our lives and the environment as well? But how? Talk to your elders and teachers.
1: अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम और अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह।
2: इस कार्यक्रम में बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह की वीर गाथा प्रस्तुत की गई है और जानकारी दी गई है कि कैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उसने अंग्रेजी शासन से लोहा लिया और देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना बलिदान दिया।
1: जी,

0: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।
2: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है। आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है, ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
3: वीर जोरावर की
4: जय।
3: वीर जोरावर की
4: जय।
3: जय जयरापुर, जय भारत।
4: जय जयरापुर, जय भारत।
1: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जयरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
0: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
1: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
0: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया, ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
5: महाराज, महाराज, हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा, ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
2: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
5: जी।
2: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
5: जी महाराज, महाराज अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
2: बिल्कुल,
5: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
2: जी मंत्री जी।
5: जी महाराज।
1: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
6: होशियार, खबरदार, रियासते जयरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
7: जोरावर सिंह महाराज आ रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह खास
8: आ रहे हैं। हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
2: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
8: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
2: देखिए निजाम साहब,

0: जी फरमाइए।
1: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
0: जी।
1: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में कामयाब ना हो पाए।
0: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
1: जी।
0: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजाम कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साए की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब न हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: तरफ से गिर चुके हो।
1: ये क्या है?
0: यू आर अंडर अरेस्ट।
1: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़कर दिखाओ। आओ सामने।
0: बहुत हो गई तुम्हारी बहादुरी। फौजियो,
2: हुजूर,
0: बांधो इस बच्चे को संजीव से।
2: जी।
1: छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ मुझे, मुझसे हाथ हटाओ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से।
0: शाबाश, शाबाश, सारल जंग, मैं खुश हुआ। मोटा इनाम दिलवाऊंगा
3: हुजूर।
1: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है। एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है। लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है। लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था।
0: और जाओ, ले चलो इसको, चलो,
1: छोड़ो मुझे, चलो, छोड़ो मुझे।
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए। उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया, उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए, तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया, लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था। उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी। वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर

0: उसे प्यार से अप्पा कहने लगे।
1: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी, और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा।
2: अप्पा ये नहीं हो सकता।
1: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
2: ये नामुमकिन है।
1: व्हाई?
2: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
1: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
2: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
3: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
0: काला पानी की सजा?
3: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
0: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे,
3: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
2: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूं मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूं। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूं।
0: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया, और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: सुन ले एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररु।
7: अच्छा दास बाबू, आपणको घरटा 1970 रे तयार हितला, राइट?
8: हेले एपर्यंत एते स्ट्रोंग केमिति अछि?
7: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सेथि पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितिलि, एवं आजि मध्य चेटिनाड सिमेंट उपरे
9: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सिमेंट सुपर ग्रेड सिमेंट 64 वर्ष रो दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सिमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
10: कोन रीमा घरे सोलर लगाई देला?
11: हाँ मधु अपा, एबे आउ बिजुली बिल पाई चिंता नहीं।
10: चिंता नहीं माने?
11: हाँ अपा, सोलार करी देले मासक को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जिबो।
10: सतरे?
11: खाली सेति कि नु? हाँ अपा, सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो।
12: आज्ञा हाँ, पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती। pmsuryaghara.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु।
13: पशु पक्षी को अंशुघात रु रक्षा करबा पई किछि उपाय।
14: अंशुघात न हेबा पई दिन 11टा रु अपराह्न 3टा पर्यंत टाण खरा रे गृहपालित प्राणी मानंकु बाहर को न छाड़ी गुहाळ रे किंबा छाई स्थान रे रखंतु।
13: पशु पक्षी को स्वच्छ ठंडा पानी पीबा को दियंतु, एवं प्राणी को विश्राम स्थान बा कोठरे जलकुंड रा व्यवस्था करंतु।
14: गुहाळ कबाट ओ झरकारे ओदा अखा झुलाई मझिरे मझिरे पानी सिंचन करंतु।
13: बुल्ला पशु ओ पक्षी को अंशुघात रु रक्षा करबा पई घर आ

0: जल कुंडर व्यवस्था करंतु।
1: अंशुघात हेले पशु पक्षी माने किछि खांती नाही, पाटी बाटे निश्वास नेबा सहित धक्के हुअंती, पाटीरू ओ नाकपुडारू फेण बाहरे ओ समय समय जीभ पदा को बाहरी आसे।
0: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत थंडा छाई स्थान को स्थानांतरित करंतु, प्रचुर थंडा पानी पीबा को देबा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकंक सह परामर्श करंतु।
1: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करंतु।
0: मत्स्य ओ प्राणी संपद विकास विभाग ओडिशा सरकार।
2: प्रसार करछो कार्यक्रम जुबो बाणी।

0: क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु SBI सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीति पाई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
4: आपण माने कार्यक्रम सुनछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्ररु
5: वर्तमानर समाचार मुख्यांश सह मु सुभाष चन्द्र शतपथी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आजिठारे तीनदिनिया सिक्किम गस्तरे जाई विभिन्न कार्यक्रमरे जोग दैछन्ते क्वाड वैदेशिक मंत्री बैठकरे अस्ट्रेलिया जापान ओ अमेरिका वैदेशिक मंत्रीक सहित ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏନ୍ଡିଏ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାରକୁ ପୁରିଲା 12 ବର୍ଷ 2014 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇବୋଲା ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଆକାଶବାଣୀର 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ପୁରୀଠାରେ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ

पार्वती की हस्त रेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे।

0: ଶୁଣିଲେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

0: ये चेंगेड़ा छुआ को आउ पारी हबनी ये पाइप खोली दे कि सेठी कुआडे जाई कि खेलु चंती ये कु देखी कि कोन मो देह सहुची
1: जेमा पा जुहारे
0: हां के सुमी की
1: हां कोन एते का ऊपर राग तम तम होउ चमो
0: राग तम तम हेबिनी
1: काई।

0: जाओ केड़े बढ़िया बुझे कहिले आउ तमे तो जहा जानिबा कथा सब पचारी टिकी निकी बुझी गलो
1: न बुझिले कोन हबो ये सब जिनस बुझिबा दरकार जहा टिके हमर मन भितरे अछि आमे पचारीले महाशया भी भलो भाबरे बुझे कहिले महाशयांकु आम अनुष्ठान तरफरु आउ थरे धन्यवाद ये सुमी ये पे तो जो खरा होउछि
0: हां परा जोर खरा होउछि
1: देह मुंड कोन होइ जाउछि ता सहित कोन होउछि ना एई जो खरा रे जदि काम नाही आमे पद्दा को जिपानी
0: 11 टारु 3 टा जमारु पद्दा को बाहरि बानी
1: दिन 11 टारु 3 टा जे किंतु जदि काम थिबो दरकारी काम अति दरकारी काम ताहले पद्दा को जते बेले जाउथुबा पेटे पानी दही पानी तोराणी पी के बाहरिबा
0: आउ पादरे जोता मुंडरे छत्ता थिबो
1: आखिरे कोला चश्मा हातरे पानी बोतल
0: आउ सुत्ता लुगा पिंदीथिबा दरकार
1: आउ जदी किछि देह इसे किसी लागिला काहारो सहाय्य नै डाक्टरंक थारु परामर्श करी आमे औषध खाइबा सेइटा बडो कथा काईना ए जो खरा होउची आमे जदि टिके सतर्क न रहिबा सचेतन न रहिबा हैरान हे जिबानी
0: नुए त उ कोन
1: हेले वयस्क व्यक्ति हेले छोटो पिला हेले गर्भवती महिला हेले से मानक स्वास्थ्य रो जत्न आम मानक नबाकु पडिबो
0: आ नुए त कोन से माने भलो रे रहिले आमे भलो रहिबा
1: हेले सुमी सब कथा त हेला
2: सुनिले कार्यक्रम कृषि संसार
3: अच्छा दास बाबू आपण को घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हेले ए पजंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
4: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीति पई मु सेतेबेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
2: आपण माने कार्यक्रम सुनुछन्ते आकाशवाणी कटक केन्द्ररु
6: नमस्कार वर्तमान मुख्य संवाद सह मो संतोष कुमार साहू अनुप्रवेश एवं जनसंख्यागत परिवर्तन आह्वानर मुकाबला पई उच्चस्तरीय कमिटी गठन कले केन्द्र सरकार शारीरिक सुस्थता वर्तमान समय एक बड़ आह्वान कहिले जस्टिस सावित्री रथ आकाशवाणी नबे वर्ष पूर्ति अवसर में आयोजित है विशाल पदयात्रा ओपीएससी द्वारा परिचालित सिविल सर्विस 2024 परीक्षाफल प्रकाशित परीक्षा में 200 जन परीक्षार्थी कृतकार्य होती बुबुन साहू शीर्ष स्थान अधिकार कर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई देय प्रदान व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज चारोटी प्रमुख राष्ट्रायत्त बैंकर वरिष्ठ अधिकारी विस्तृत आलोचना कर भुवनेश्वर स्थित पर्यटन भवन में आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अध्यक्षतारे विभाग समीक्षा बैठक अनुष्ठित बैठक में विभिन्न प्रकल्पर अग्रगति संक्रांत विभाग अधिकारी आलोचना कले उपमुख्यमंत्री भारतीय महालेखा नियंत्रक और महासमीक्षक सीएजी राज्यर भुवनेश्वर और कटक गतिशीलता पर नागरिक केन्द्रिक अनुपालन अडिट करिबे उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित युक्त दुई परीक्षार उत्तर खाता पुनः मूल्यायन आवेदन आसंता पहिलारु आरंभ हेबो कलाहांडी जिला मदनरामपुर थाना अधीन गौड़कर्ला खुंटा ग्राम से आज पायखाना टांकी श्वासरुद्ध हो 6 जन मृत्यु घटन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अत्यंत दुख प्रकाश कर मुख्यमंत्री मृतकों आत्मीय स्वजनों पर 4 लाख टंका लेखाए अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा कर श्रृंखलित स्नानयात्रा और घोषयात्रा आयोजन नहीं पूरी जिलापाल अध्यक्षतार श्रीमंदिर कार्यालय आज एक बैठक अनुष्ठित राज्य में गरम और गुळुगुळी वृद्धि पाइबा नहीं समस्त जिला सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग केन्द्र मुख्य संवाद वर्तमान परवर्ती मुख्य संवाद शुणिपारे रात 10:00।

0: जन जागृत कार्यक्रम करती है वो अवसर घटेगा ही घटा, वो एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। तो उसी क्रेडिबिलिटी, उसी विश्वसनीयता को लेके हम आगे चलेंगे और इसी उम्मीद करते हैं कि ये जो नब्बे वर्ष हमें जो दिग्दर्शन दे रहा है उसी विरासत को हमें आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।
1: एडिशनल डीसीपी श्रीयुक्त कृष्णचंद्र सेठी महोदय एभली एक कार्यक्रम में जोग दे अक्षय महांती गीत परेषण करने सहित से अभिभाषण।

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୀତ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्ते श्रोताओं, आज हमारी चर्चा के विषय है समानार्थक शब्द। हमें शिक्षा देने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुरुजी अजित प्रसाद महापात्र और उनके साथ है छात्रा परिस्निग्धा बेहरा। तो चलिए सुनते हैं समानार्थक शब्द के बारे में।
2: प्रणाम गुरुजी।
3: खुश रहो। सुनो
2: जी गुरुजी,
3: अभी मैं कुछ वाक्य बता रहा हूँ
2: जी,
3: तुम्हें इनमें समानार्थक शब्दों के अर्थों को
2: जी
3: बताना है।
2: जी गुरुजी।
3: हाँ
2: जी।
3: एक वाक्य है, जैसे मैं कह रहा हूँ उसके बेटी नहीं है, एक वाक्य है। क्या कहा मैंने?
2: उसके बेटी नहीं है।
3: नहीं है, उसकी बेटी नहीं है
2: जी।
3: एक में है उसके बेटी नहीं है
2: जी।
3: और दूसरे वाक्य में है उसकी बेटी नहीं है
2: जी।
3: ये दोनों वाक्य सही है, लेकिन इनमें सूक्ष्म भेद है। उसके और उसकी कहाँ होगा
2: जी,
3: किस अर्थ में प्रयोग होगा, ये तुम्हें जानना है
2: जी गुरुजी।
3: समानार्थक वाक्यों का जो सूक्ष्म अर्थ भेद है, इन पर हम चर्चा करते हैं
2: जी गुरुजी।
3: उसके बेटी नहीं है, उसकी
2: बेटी नहीं है,
3: उसके उसकी
2: जी गुरुजी।
3: अच्छा, ये जो उसके है, यानी उस स्त्री पुरुष के बेटी नहीं हुई, बेटा हुआ या वो बेटी होके चल बसी, और उसकी बेटी नहीं है अर्थात बेटी उसकी नहीं और किसी की है।
2: अच्छा,
3: उसकी बेटी नहीं है
2: जी,
3: माने यहाँ जो बेटी खड़ी है, बच्ची जो खड़ी है, ये उसकी नहीं है
2: जी,
3: यानी और किसी की है
2: जी गुरुजी।
3: तो दो अर्थ है, थोड़ा सा बारीकी से अगर देखोगी, ध्यान देकर, तब मालूम हो जाएगा
2: जी गुरुजी।
3: वैसे और दो वाक्य मैं बता रहा हूँ, सुनो ठीक से, समझ लो पहले। वे दो दिन में आए, दो दिन में, वे दो दिन पर आए। देखो, दिन में आए और दो दिन पर आए। दो दिन में का अर्थ है यानी दो दिनों का समय लगा उनको
2: जी।
3: दो दिनों में आए माने दो दिन समय लग गए उनको आने के लिए
2: जी।
3: और दो दिन पर आए, इसका मतलब है दो दिन खत्म हो गए, दो दिन जाने के बाद वे आके पहुंचे
2: जी गुरुजी।
3: मालूम हो गया अर्थवेद क्या होता है
2: जी।
3: जैसे कहा उसके उसकी, दो दिन में, दो दिन पर, यानी दो दिन बीतने के बाद, ठीक
2: जी।
3: अच्छा, ऐसे अर्थभेद के आधार पर मुझे दो वाक्य बताओ, उदाहरण।
2: हाँ, मैं ही घर आई और
3: ठीक है, मैं ही घर आई ठीक है
2: जी, और मेरे घर ही गई।
3: मैं मेरे नहीं, मैं घर ही गई
2: जी।
3: मैं
2: घर ही गई,
3: घर ही गई ठीक है। मैं ही घर आई
2: जी,
3: यानी इसका अर्थ क्या हुआ?
2: दूसरी लड़की नहीं, मैं गई।
3: हाँ, तुम ही आई या तुम गई
2: जी,
3: तुम आई कहो, गई को कुछ भी कहो
2: जी,
3: लेकिन खाई नहीं कह सकती हो
2: जी।
3: तुम नहीं कह सकते हो कि मैं

0: ही खाई या मैं ही खाई वो गलत हो जाएगा, इसमें नहीं का प्रयोग है, मैंने खाया कहना पड़ेगा
1: जी।
0: समझ रही हूँ? इसलिए मैं ही घर गई और कोई लड़की नहीं, और मैं घर ही गई यानी क्या अर्थ है इसका?
1: इसका अर्थ है और कोई नहीं
0: और कहीं नहीं गई, यानी तुम गई लेकिन घर गई
1: जी,
0: स्कूल नहीं गई
1: जी,
0: या और किसी के घर नहीं गई, तुम अपने घर ही गई। अब समझ गई तो
1: जी।
0: और एक वाक्य सुनो, मैंने ही उसे पुस्तक दी, मैंने उसी को पुस्तक दी। देखो दो वाक्य है, दोनों वाक्य समान लगते हैं, मैंने ही उसे पुस्तक दी और मैंने उसी को पुस्तक दी, इसके अर्थभेद बताओ।
1: मैंने
0: ही उसे पुस्तक दी,
1: पुस्तक दी अर्थात
0: हाँ?
1: मैंने पुस्तक दी और किसी ने नहीं ली।
0: ठीक, बिल्कुल ठीक। मैंने ही उसे पुस्तक दी यानी तुमने दी
1: जी,
0: तुमने कलम दी उसे, तुमने
1: जी,
0: ही
1: जी,
0: और कोई लड़की ने कलम नहीं दी या किताब नहीं दी या पुस्तक
1: जी,
0: नहीं दी
1: जी।
0: ठीक है, दूसरा वाक्य को जो है, मैंने उसी को पुस्तक दी, इसको स्पष्ट करो।
1: मैंने उसे ही पुस्तक दी और किसी को नहीं।
0: हाँ, उसे ही पुस्तक मैंने दी और किसी को पुस्तक नहीं दी। शाबाश। और उदाहरण देखो, यह काम कुछ नहीं करता, एक वाक्य है, यह काम कुछ नहीं करता। और शब्द क्रम में मैं फिर इसको थोड़ा बहुत उल्टा के कहता हूँ, यह कुछ काम नहीं करता
1: जी।
0: यह काम कुछ नहीं करता और यह कुछ काम नहीं करता, इन वाक्यों में सूक्ष्म अर्थभेद क्या है बताओ
1: जी। मुझे तो कुछ नहीं लगता, मुझे तो दोनों वाक्य
0: समान लगते
1: हैं।
0: नहीं, इनमें जो सूक्ष्म अर्थभेद है, सुनो ठीक से, अगर सुनोगी ठीक से, उसे पढ़ोगी दो तीन बार, मालूम हो जाएगा क्या अर्थभेद है। यह काम कुछ नहीं करता अर्थात बहुत कम करता है
1: जी।
0: काम कुछ नहीं करता यानी बहुत काम कम करता है, और कुछ काम नहीं करता यानी बिल्कुल बेकार है, बैठा रहता है। अब समझ गई?
1: हाँ,
0: दोनों वाक्य एक जैसे लगेंगे लेकिन सूक्ष्म अर्थभेद, थोड़ा
1: से देखने पर अर्थभेद मालूम पड़ता है।
0: ठीक, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अर्थ समझना पड़ेगा
1: जी।
0: कब कह पाओगे? हाँ
1: जी गुरुजी।
0: एक वाक्य देखो, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने?
1: मुझसे यह वाक्य संभव नहीं हो सकता।
0: काम कहो,
1: मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता।
0: इस वाक्य को ठीक करो
1: गुरुजी। ये वाक्य तो ठीक लगता
0: ठीक
1: है,
0: ठीक है
1: जी।
0: हाँ, ठीक नहीं है, ठीक लगता है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, ये जो हो सकता और संभव ये तो समान है
1: जी।
0: इसलिए तुम कहोगे मुझसे यह काम संभव नहीं। क्या कहोगे?
1: मुझसे यह काम संभव नहीं।
0: बस हो गया, मानो असंभव है, यानी मुझसे ये काम नहीं हो सकता
1: जी गुरुजी।
0: मुझसे यह काम
1: संभव नहीं हो सकता।
0: नहीं, अरे हो सकता है कहोगे, नहीं गलत हो जाएगा,
1: नहीं है
0: संभव नहीं, मुझसे ये काम संभव नहीं
1: है।
0: और ये देखो शास्त्री जी,
1: जी
0: लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ, ऐसा कहते हैं प्रधानमंत्री जो थे शास्त्री जी, उनकी मृत्यु से हमें बड़ा खेद हुआ। ये जो खेद शब्द है, इस खेद शब्द का अगर प्रयोग कर देते हैं तो लगता है कि ठीक है, खेद का अर्थ दुख है, लेकिन ये उपयुक्त शब्द नहीं है। याद रखो, खेद शब्द जो है ये सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है
1: जी।
0: कहाँ प्रयोग होता है?
1: सामान्य अर्थ।
0: और दुख जो है ये अत्यंत विशेष अर्थ में, या नितांत हानि हो जाती है जब, तब हम कहते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ। देखो खेद और दुख दोनों का अर्थ समान है
1: जी।
0: खेद भी दुख है और दुख भी दुख है
1: जी।
0: लेकिन सामान्य अर्थ में अगर होता है तो खेद का प्रयोग करोगी ठीक,
1: और विशेष अर्थ में दुख का।
0: हाँ, अगर नितांत हानि हो गई मृत्यु से
1: जी,
0: बहुत बड़ा नुकसान हो गया देश का, देश की हानि हो गई शास्त्री जी की मृत्यु से, तो तुम्हें कहना पड़ेगा कि दुख। इस वाक्य को और एक बार कहो ठीक करके, शास्त्री जी की मृत्यु से।
1: शास्त्री जी की मृत्यु से,
0: मृत्यु कहो,
1: शास्त्री जी की मृत्यु से
0: हाँ,
1: हमें बड़ा दुख हुआ।
0: दुख हुआ, खेद नहीं
1: जी,
0: कहना है तुम्हें
1: जी,
0: जी। एक वाक्य और देखो, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्या कहा मैंने?
1: तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी।
0: होगी, क्या ये वाक्य तुम्हें सही लगता है?
1: जी गुरुजी।
0: सही लगता है
1: जी, वाक्य तो बिल्कुल ठीक है।
0: ठीक है, अच्छा ये बताओ यहाँ क्रिया किसके अनुसार हुई है?
1: बात के अनुसार।
0: बात शब्द कौन सा लिंग है?
1: बात शब्द स्त्रीलिंग है।
0: स्त्रीलिंग है, तो इसलिए बड़ी बात होगी तुमने कह दिया
1: जी।
0: लेकिन ये गलत है।
1: क्यों?
0: क्योंकि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बात जो शब्द यहाँ करता वो नहीं है, इस वाक्य में

0: कहना करता है न कि बात। अतः कर्ता के अनुसार क्रिया होगी
1: जी,
0: यानी तुम कहोगे कहना होगा
1: जी,
0: माने बड़ी बात होगी नहीं,
1: बड़ी बात
0: अगर खाली कहोगे ये बड़ी बात होगी ठीक है, लेकिन पहले तुमने कह दिया है तुम्हारा यह कहना, यह कहना क्रिया जो है यहाँ कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात क्या
1: होगा,
0: माने क्या होगा, कहना,
1: कहना
0: बात नहीं
1: जी,
0: कहना। यहाँ ये जो होगा क्रिया जो है क्रियापद, इसका संबंध कहना शब्द के साथ है, जो कर्ता है, कहना शब्द यहाँ
1: करता
0: है और यहाँ बात के अनुसार क्रिया नहीं होगी, लेकिन वहाँ बड़ी बात वहाँ तुमने कहा ठीक है
1: जी,
0: लेकिन होगा होगा, होगी नहीं होगा होगा ठीक, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा होगा
1: होगा,
0: तुमने समझा नहीं, यहाँ कहना जो है ये करता है
1: जी,
0: और बात शब्द करता नहीं है
1: जी, बात शब्द के साथ कोई संबंध नहीं
0: है, क्यों नहीं है, इसलिए तो बड़ी बात हुआ
1: जी,
0: लेकिन क्रिया जो है क्रिया बनेगी कर्ता के अनुसार
1: जी।
0: बताओ क्या कहा मैंने, क्या होगा और एक बार बताओ ठीक करके, यह कहना
1: तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा
0: होगा, और एक बार सुनो, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, ये वाक्य है
1: जी।
0: इस वाक्य में गलती छाटो,
1: मेरे लिए ठंडा बर्फ और मेरे लिए ठंडा बर्फ और
0: उड़िया में थौ कहती हो
1: जी,
0: लेकिन हिंदी में थौ नहीं चलता है, ठौ चलता है, ठंडा
1: मेरे लिए ठंडा
0: बर्फ
1: बर्फ और
0: गर्मी आग लाओ, ये गलत हो गया
1: जी।
0: देखो क्यों, बर्फ जो है
1: जी,
0: बर्फ कौन सा लिंग है,
1: स्त्रीलिंग,
0: स्त्रीलिंग है, अच्छा आग कौन सा लिंग है,
1: पुल्लिंग,
0: आग स्त्रीलिंग है, आग भी स्त्रीलिंग है और बर्फ भी स्त्रीलिंग है
1: जी,
0: लेकिन बर्फ क्या ठंडी नहीं होती है,
1: होती है
0: हमेशा,
1: हमेशा
0: बर्फ हमेशा ठंड है,
1: ठंडी ही होती है,
0: तो फिर तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि ठंडी बर्फ लाओ
1: जी,
0: अच्छा आग क्या गर्म नहीं होती है,
1: जी होती है,
0: हमेशा आग गर्म है,
1: गर्म है,
0: कोई कह सकता है कि आग ठंडी है,
1: नहीं
0: है?
1: नहीं,
0: तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा कि मेरे लिए बर्फ और आग लाओ
1: जी,
0: क्योंकि बर्फ अपने आप में ठंड है,
1: ठंडा है
0: और
1: आग अपने आप में गर्म है,
0: गर्म है
1: जी,
0: तो क्या कहोगे, कहो ठीक से ये वाक्य बताओ,
1: मेरे लिए बर्फ और आग लाओ,
0: आग लाओ और ठंडा बर्फ या ठंडी बर्फ और गर्मी आग, ये कहने से वाक्य
1: गलत
0: हो जाएगा ठीक है
1: जी।
0: अच्छा एक वाक्य पर ध्यान दो, यह कहना आपकी भूल है
1: जी गुरुजी,
0: यह कहना आपकी भूल है
1: जी,
0: भूल शब्द का लिंग क्या है,
1: स्त्रीलिंग,
0: स्त्रीलिंग है, इसका बहुवचन क्या होगा,
1: वही भूल,
0: भूले, स्त्रीलिंग अकारण शब्द का बहुवचन ए लगकर होता है, भूले
1: जी।
0: और एक शब्द बताओ, जैसे पुस्तक स्त्रीलिंग है
1: जी,
0: अकारंत है
1: जी,
0: बहुवचन क्या हो जाएगा,
1: पुस्तकें,
0: पुस्तकें, आंख क्या होगा,
1: आंखें,
0: आंखें, वैसे भूल से भूले, लेकिन ये हमारा जो चर्चा का विषय है वो ये नहीं है
1: जी,
0: यहाँ जो भूल शब्द है ये स्त्रीलिंग है ठीक है
1: जी,
0: लेकिन यहाँ भूल के बदले में
1: जी,
0: अगर हम और एक शब्द, अलग शब्द, पर्यायवाची शब्द प्रयोग करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा, सोचो क्या होगा,
1: गलती,
0: गलती, कहो पूरा वाक्य बताओ,
1: यह कहना आपकी गलती है,
0: यह कहना आपकी गलती है
1: जी,
0: ये गलती शब्द अधिक उपयुक्त है
1: जी,
0: याद रखो यहाँ हिंदी कृदंत भूल का अर्थ ठीक नहीं बैठता, यहाँ जो भूल शब्द है यहाँ ये शब्द ठीक नहीं लगता, इसके बदले में तुम अरबी तद्धित शब्द जो है गलती
1: जी,
0: गलती का अगर प्रयोग करोगी तो ये ज्यादा ठीक रहेगा, उचित रहेगा, उपयुक्त होगा, और इसके बदले में अगर तुम त्रुटि शब्द का भी प्रयोग करोगी तो भी ठीक होगा,
1: कौन सा शब्द गुरुजी,
0: त्रुटि
1: जी, अच्छा,
0: त्रा ह्रस्व ट में छोटी त्रुटि, इसका भी अर्थ है भूल गलती, हाँ? तुम कहोगे ये कहना आपकी त्रुटि है
1: जी,
0: आपकी गलती है
1: जी,
0: ठीक है
1: जी।
0: अब और एक बार बताओ, ये इसमें मैंने क्या बताया, ये जो बताया नियम
1: जी,
0: हिंदी कृदंत, हाँ,
1: हिंदी कृदंत में भूल का अर्थ ठीक नहीं
0: नहीं बैठता, इसमें क्या बैठता है ठीक,
1: अरबी,
0: अरबी, अरबी नहीं, अरबी तद्धित गलती का प्रयोग, गलती शब्द का प्रयोग उचित बैठता है
1: जी,
0: नहीं तो गलती के बदले में और क्या कर सकती हो, त्रुटि का प्रयोग कर सकती हो, तो वाक्य ठीक हो जाएगा।

0: जी
1: मने एकदम बारीकी से देखोगे कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग करने से वाक्य ठीक होगा और
0: जी
1: अच्छा
0: गुरुजी
1: लगेगा,
0: जी
1: सही होगा, सुनने के लिए भी अच्छा लगेगा।
0: जी
1: और
0: गुरुजी
1: ज्यों त्यों जैसे तैसे अगर हम इधर उधर माने समान अर्थ सोचकर अगर हम प्रयोग कर देंगे तो गलत हो जाएगा।
0: जी
1: ठीक है,
0: जी
1: समय
0: गुरुजी
1: हो गया है, बाद में चर्चा करेंगे।
0: जी गुरुजी प्रणाम।
1: जीते रहो।
2: अभी आप लोग सुन रहे थे समानार्थक शब्द के बारे में। हमें शिक्षा दे रहे थे गुरुजी अजित प्रसाद महापात्र, उनके साथ थे छात्रा परिस्निग्धा बेहरा। तो आज की हिंदी शिक्षा को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

0: अनुपम मिश्र के साथ शिवांग शाह, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
3: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
4: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
3: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
1: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
5: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
6: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
5: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन

चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारण

0: तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रूपये से बढ़ाकर 1,580 रूपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration. Condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav, and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
4: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
5: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

0: ଶୁଣିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପକ ତାପ ଦାନବ, ରଚନା ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସ, ପ୍ରଯୋଜନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିତ୍ର ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପିଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିତ୍ର, କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ବି ବୁଦ୍ଧପ୍ରସାଦ ରାଓ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରା, ସୁପ୍ରଭା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାଣି, ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପତି, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ମିନତୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଦେବକୀ ପୁଥାଳ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

रूप धरिले मोहन मुरली धरि श्री करे निशी होई अछि एकार दंड अचेतन कले पंचम कांड से राधापुर।

0: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ଭାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी।

0: संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अपन मने कार्यक्रम सुनुछंदी आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
3: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु संतोष कुमार साहू। अनुप्रवेश एवं जनसंख्यागत परिवर्तन आह्वानर मुकाबला पई उच्चस्तरीय कमिटी गठन कले केन्द्र सरकार। क्वाड वैदेशिक मंत्रीस्तरीय बैठक नूआदिल्ली में अनुष्ठित। मुक्त तथा उन्नत भारत प्रशांत महासागर अंचल प्रति अंगीकारबद्धता प्रकाश कले सदस्य राष्ट्र। ओपीसी द्वारा परिचालित

0: आलोचना करिसेंती डॉक्टर दुर्गा प्रसाद मिश्र।
1: मस्तिष्क पक्षाघात बा सेरिब्रल पाल्सी विश्व स्वास्थ्य संगठन रो सर्वेक्षण अनुसार विश्व समुदाय रो हाराहारी 10% लोक संख्या किछि ना किछि अक्षमतारे शिकार होइथांती। भारत रे एहा जनसंख्या रो 3.8% विभिन्न अक्षमता मध्यरु मस्तिष्क पक्षाघात अन्यतम ओ विश्व अक्षमतार पाखापाखि 15-20% एथिरे आक्रांत। भारत रे प्रति 1000 जनसंख्या रे पाखापाखि 3 जन एहार शिकार। ओडिसा रे मध्य एहार अनुपात चिंतार कारण। अत्याधुनिक ज्ञान कौशल ओ शौशव सुरक्षा दिगरे अनेक गुरुत्व दिया जाउथवा बेले सेरिब्रल पाल्सी रो वर्धिष्णु भयावहता चिंतार कारण पालटिछि। ताहेले मस्तिष्क पक्षाघात कौन? मस्तिष्क आघात जनित बा विकास वैकल्य हेतु शारीरिक परिचालना तथा अंगभंगी ओ अंगचालना रे हेउथवा व्यतिक्रम समूह को मस्तिष्क पक्षाघात कहुजाई। यह एक रोग नुहे बरं एक अवस्था। साधारणतः यही अवस्था अपरिवर्तनीय किंतु यार चिकित्सा द्वारा शारीरिक संचालन तथा कार्य करिवा दिगरे उन्नति अणाई पारे तथा अन्यान्य असुविधा को एड़ाई दे जाई पारे। सेरिब्रल पाल्सी कारण कौन? यह जन्म पूर्व जन्म समय जन्म पर केतेक कारण यथा मां केतेक अवस्था थायरएड जनित असुविधा संक्रमण थरावात जन्म समय पिलाटी न कांदिबा मस्तिष्क को आवश्यकता अनुसार रक्त तथा अम्लजान न पहुंचा मस्तिष्क कौन संक्रमण होगा गर्भस्थ शिशुर मस्तिष्क ठीक भाव विकास हो अधिक समय धरी प्रसव व्यथा होगा मस्तिष्क चापी हो रही ठीक समय प्रसव न हो पार अति कम ओजन होगा जन्म समय पूर्व प्रसव होगा एवं जन्म पर पिलार मस्तिष्क किसी संक्रमण बात मुंड आघात लगवा आदि कारण यार लक्षण कौन? साधारण शिशुटीए जेपरि भावे निज शरीर अंग प्रत्यंग को नियंत्रण बा समन्वय करी चलाइबारे सक्षम होइथाय मस्तिष्क पक्षाघात आक्रांत पिला माने सेबोली करि परि नथांती। मस्तिष्क पक्षाघातर गंभीरता भिन्न भिन्न प्रकार ओ एहा अति सरल ठारु आरंभ करी अति जटिल पर्यंत होइथाय। अवस्थार गंभीरता मस्तिष्कर सेही निर्दिष्ट अंश को होइथिबा आघातर आकार ओ गंभीरता अनुसारे होइथाय। चिकित्सा द्वारा परवर्ती समय किंतु आघात पाइथिबा अंशटीर आउ वृद्धि घटि नथाय। शारीरिक परिचालनागत असुविधा विभिन्न प्रकार होइथाय जथा नवजात शिशु ठीक समय गुरुंडे नाही बेक सीधा करि परि नथाय ठीक समय बसी नथाय डेरी रे चाले समवयस्क पिलांक भली चाली नथाय गोड़ छंदी होइ जाय कोड़ लेउटे बारे असुविधा होइथाय निज हाथ गोड़ रे तालमळ बा नियंत्रण रे असुविधा होइथाय। सेमानंकर अंगप्रत्यंग चलाइबा नियंत्रण नथाय अधिकांशंकर मांसपेशी गुडीक अतिशक्त

0: श्रोता बन्धुमाने कार्यक्रम शुणुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो।
1: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।

0: चिंता नहीं चिंता नहीं माने
1: हाँ अपा सोलार करी देले मास्टर को 300 यूनिट पर्यंत बिजुली बिल बंची जीवो
0: सतरे
1: खाली सेती किनु हाँ अपा सौर शक्ति व्यवहार करले परिवेश भी सुरक्षित रहिबो
2: आज्ञा हाँ पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती pmsuryaghara.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु
3: आमो राजा बाबू करा जेत्ते बेले देखिबो घरे एसी फ्यान सब चलिथिबो
4: ओहो मा तमरो प्रति कथा रे टेंशन
3: इलेक्ट्रिक बिल केते आसु छे जानिछो
4: देखो मा घरे सोलार लगे देले चिंता जिवो
3: हां सेटा जमती मागणा रे हे जिवो
4: जानिना की सरकार पर एति पे सब्सिडी देउछंती
2: आज्ञा हां पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती pmsuryaghara.gov.in रे आज ही आवेदन करंतु
5: घरे टिकिए मुहूर्त फ्यान बंद हे गले निर्गत झाल रे उदाहि जाउछि समग्र शरीर एसी रे केते समय रही हेबो काम त करबाकू पड़िबो बाहर को त जीबाकू पड़िबो तेबे बाहर को जीबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु संगरे पानी बोतल टिए नेबाकु आदम भूलंतु नाही आउ मने रखंतु टोपाए पानी आतो नष्ट करंतु नाही एई समय रे समस्ते निश्चय बुझी परिबे टोपाए पानी रो मूल्य कोन घरर वयस्क वयस्कांकर जत्न नियंतु गर्भवतींकु विशेष ध्यान दियंतु

चली गले केते मधुर केते स्निग्ध केते लास्यमय से स्मितर झलक निधाघर दारुण रौद्रतापर प्रखर उष्मतारे सदिकी चंदनर शीतल आलिम्बनटिए बोलिदिए आर्य मोर प्राण मोर

0: संसार ठारु अनेक दूर तू स्वप्न देखुचु एथर वृद्धा आशा मा माया मरीचिका पछरे थाई कहीं कि कोमल तन मन को कष्ट दब मा फुली जा मा से मिछ मरीचिका को तू फुली जा मु तो पाई साधव पु बाछी आनी
1: मो पति तर कन्या ही पाए चांडाली रक्त मो धमनी रे प्रवाहित होई पारे तथापि मो पति त नुए मा चांडाली नुए तमी जानो मा श्रीमती को मंत्र रे दीक्षित कर दे गले केही जन्मरु चांडाली नुहंती जन्मरु पतिता नुहंती चांडाली आउ पतिता हुंती कर्म रे मो कर्म उपरे मोर विश्वास अछि मा मो धर्म उपरे मोर आस्था अछि मो बंचिबा को चाहे पुत होई पवित्र होई
0: तू भूल करछु मा प्रकृति
1: भूल के ठीक बुझाणी न मा केवल एति की जानी मुझे हाँ देवता भाभी मो मन प्राण और आत्मार मंडप उपरे स्थापना करी छी से ही मोर परम काम्य तांको न पहले मु जीवन हारी देवी मा मु जीवन हारी देवी को अजुना पुरुष पाखरे मु निज को समर्पित दे पारि थी मा मु समर्पित दे पारि थी
0: जीवन रे सरस्वती भितरे झड़ आसियो प्रकृति
1: आसु जेति झड़ आसी रे भी मु माता पति सही ने बिमा
0: जीवन रे आकाश रे सूच अपसरि छिपो ओ मा अंधकार माडी आसियो प्रकृति
1: तथापि से अंधकार भितरे तांकर स्मृति रूप कहलो करे मु आलोकित हे बिमा
0: जीवन शुष्क हे छिपो प्रकृति
1: मोर विश्वास मो शुष्क जीवन रे आद्रता आणी देबा पई निश्चय मो देवतांक दीर्घ अस्त्र आशीर्वाद रे झर छुटी आसिबो मा
0: पागली सतरे विश्वासर पवित्रता को तू जानिलु केमिति के तते देला ये महामंत्र
1: मो मनर मणिस मो हृदय रो देवता मो प्राण मो आत्मा
0: कोटे कथा कहि प्रकृति
1: कह मा
0: सी एक गहन कथा आ मो पाख को है तो कान रे मु चुपी चुपी कह देबी
1: को कथा मा
0: आग तो मो पाख को आ ना कानटा टिके देखा
1: नियो मा
0: हेला तो एही होची एकमात्र रास्ता एकमात्र पंथा नचेत जड़ पत्थर मनीष आनंद को पाइबा इति सहज कथा नुहे मा
1: आज मोर परम आनंद मो माटी भारी सुंदर खूब बुद्धिमती तमे मोर सुन्ना मा
0: हाँ सुन आग मत कथा दे तो आउ के पद्म कड़ी आखिर लुह डालिबुनि
1: कथा देली मा आज तम प्रकृति आखि कोण रु
0: तेबे जा ए दीप देहुड़ी को लिभे दे राती अनेक हेलाणी आखि बुझे शोई पड़
1: न मा ए दीप देहुड़ी लिभिबानी ये एमती चलिबो मो मनर मणिष मो कक्षरे पाद देबा पूर्वरु मु प्रथमे ए दीप शिखारे तांको पंदापना करिबि दीपाळी आलोकरे तांको पाद धोई देबि तापरे से पवित्र पाद मानको मो पणतकानी रे पोछि दे तांको मोर रत्न पलंग उपर को टाणी नेबि
0: प्रकृति
1: बास से सब दिन पई मोर हेजिबे दीप तांको मो पणतकानी रे पांथि रखिबि मो आशा पूर्ण हब मो स्वप्न सार्थक हब कामना बासनार पुतकल के साजी मो हसीबी मा मो हसीबी
0: पागल आलो मा संसार पथरे पाद दबा आगुरु थरे तोर ये अलरा केश गुडा को बांधी दे आंटू तल को लंबी जी परा टाणी लोभे जीव एबिते पागली झियोटा मोर
1: तमे ठीक कहिछ मा प्रकृति तमोर पागली नि साजी जी देखो भिक्षु कला भिक्षु आषाढ़ी राति को साथी करी दीपति हुड़ी चली केमिति ये चांडाली कन्या प्रकृति तम पथ अनुसार चाहे बसीचे एमती सबुदिन चाहे बसी थिबो दिने तमे

0: आहुति दे मा
1: किंतु
0: तंदो कहेंगे तंत्र पूजा विधि रे विभ्राट हेले मनर मनीष को पाइबुनि मा
1: भिक्षु आनंद किसी अमंगल हबनी तो मा
0: अमंगल
1: मु तंत्र पूजा पाठ को भय करे ता छुरे तमे तो जानो मा भिक्षु आनंद मो जीवन मो प्राण
0: मो तंत्र रो साधिका कथा देली मो बाकी रे अनथ हेबो नाही शेष पुष्पर आहुति परे परे भिक्षु आनंद कर श्रमण जीवन अवसान घटिबो आउ से चेतवन विहार परित्याग करी भिक्षा पात्र आउ दंड परिहार करी तो पाखकु फेरी आसिबे
1: किंतु
0: तांक भिक्षु जीवन रे सकल साधना श्रमण जीवन रे सकल पुण्य व्यर्थ हेबो आउ से एक अलौकिक मोहर वर्षपति होई तंत्र रो सम्मोहन शक्ति बल रे तो द्वारस्थ हेबे तार करण पूर्वक प्रण भिक्षा करिबे बास तो कामना बासना सब पूर्ण हेबो तो नारी जीवन सार्थक हेबो दे मा प्रथम अर्क पुष्पर आहुति दे

0: ଶୁଣୁଥିଲେ ନାଟକ କଳାପକ୍ଷୀର ତୃଷ୍ଣା। ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତି, ବର୍ଷା ପଟ୍ଟନାୟକ, କାନ୍ତି, ଶୁଭସ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର, ବସୁନ୍ଧରା, ଶାନ୍ତିସୁଧା ପାଢ଼ୀ, ଉପାଳି, ଜୟଦୀପ୍ତ ଦାସ। ରଚନା ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

0: अरे भाई दी भक्त दी प्रभु को डाक पड़ी सीताराम सीताराम हनुमान स्मरण कर
1: एने हनुमान इमिति ओजन हेले
0: ये चक्र
1: सही पारे
0: चक्रधर को डाकुती बोले प्रभु रक्षा कर आरे गरुड़ डाकटा न्यून हो गला सीताराम डाकटा ओजन हो गला रे
1: हबा कथा
0: बेलकु बेल बेलकु बेल
1: वृद्धि ओजन वृद्धि
0: हनुमान कहला नहीं पारुनु
1: आहा
0: जदि न नबू
1: हां

0: स्तुति आरंभिले
1: हरि नाम रखिले
0: अरे सत्यभामा गर्व करथिले मुसि ताहबिनी तांको गर्व खर्व हेला
1: एणे चक्र गदा गरुड समस्तंगर दर्प चूर्ण हेला
0: हनुमानर आंगुटीरु गोटे हातरु काखतळु पडिगले तीनटा जाग आयुध आउ बाहन
1: आछा निश्वास रुंधा हेथिबे गर्व
0: समस्त भगवानक चिंता करथिन भाई
1: आहा।

0: ବରହମପୁର ବୁଗୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଏଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଦୁଜେ କେ ଲିଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏହି ଗୀତଟିକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଗୀତଟିକୁ ଯୁଗଳକଣ୍ଠରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ବାଲସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଏବଂ ଅନୁରାଧା। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ଗୀତଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛୁ।
1: ज्यादा बहुत ज्यादा देर रहने के लिए।
2: ओ माय गॉड, मेरी तो हिंदी कविता की क्लास है।
1: हिंदी कविता है ना?
2: हाँ।
1: वो मैं तुमको टीच करता हूँ।
2: तुम और हिंदी कविता?
1: तुम समझता मैं हिंदी कविता नहीं जानता? मेरे जीवन साथी, प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम बिन्हर।

दोस्तों आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,